0: रोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल।
1: यो यो चेक इट आउट रिमिक्स। Yeah, Hunter.